आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वणतरण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जाल ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे,

आपे धरती आप है राहक आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत

कतहु सुचेत होय के चेत न कुचार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होय के मांगत फिरत भीख, कहूं महादान होय के मांगो धन देत हो।

कहूं देवतान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देतो हो। कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी से, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेतो हो। कतहूं विचार अविचार को विचारत हो, कहूं निज नार पर नार के नकेत हो। कहूं बेदरीत कहूं तासों बपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत कहूं।

कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

नारायण कला धार जग में परवरे। निरंकार आप गुरु नानक दे रूप विच संसार ते प्रगट हुए ते फिर ओही गुरु नानक अपने प्यारियां दी संगत विच अपने प्यारे गुरसिखां दे विच दर्शन दे रहा है ते शब्द रूप विच बैठा होया अपना विचार दे रहा है। कदे साहब कलगीधर पातशाह ने कहा सी गुरसिखां नूं, सिखां ने पुछिया महाराज तुसी तां शरीर करके साथों अलग होना लोड़दे हो, असी की करांगे। साहब कहन लगे की चाहुंदे हो कि महाराज दर्शन किदे करांगे, गल्लां किदे नाल करांगे, पूजा किसकी करांगे। साहब कहन लगे पूजा तां तुहानूं मैं पहला ही एक अकाल दी समझा चुका, पूजा अकाल पुरख दी करनी, मेरा दर्शन करना है तां खालसे दा दर्शन करना, मेरे नाल गल्लां करनियां ने, गुरबाणी दी विचार करनी, गुरु के बचना दे अनुसारी होगे, गुरु के बचना नूं ध्यान नाल पढ़ो सुनोगे, गुरु नाल गल्लां करदे जापोगे। इत्थे भाई साहब कहिंदे ने ओही वाहिगुरु अकाल पुरख गुरु दा रूप धारण करके प्रगट होया ते फिर शब्द विच समा के बैठ गया ते संगतां विच गुरसिखां विच बैठ गया। जद ऐसा होके बैठा है तां गुरसिखां दी मन्नेगा, साध संगत दी बेनती ते अरदास प्रवान भी करेगा, उन्हां दीआं लोड़ां दा ख्याल भी करेगा। भाई साहब कहिंदे नूं करन कारण समर्थ वाहिगुरु साध संगत दा करे कराए, सारा कुछ उहदे भंडारियां च भरिया पिआ पर साध संगत दा दे दिवाया, साध संगत जिन्हूं चाहे दवा देवे, जो चाहे लै लवे। पार ब्रह्म गुर रूप होए साध संगत गुर शब्द समाया, पार ब्रह्म गुरु दा रूप हो करके साध संगत विच ते गुर शब्द बैठा है, जिस नूं लोकां ने जग भोग जोग ध्यान कर अनेकां कर्म कांडां दे नाल अनेकां जतनां दे नाल पूजा परे ना दर्शन पाया, किसे नूं लब्भा नहीं, किसे नूं दर्शन नसीब नहीं होए, गुरसिखां ने उहनां नूं लभ लिया, संगत विचों लभ लिया, गुरु शब्द विचों लभ लिया, और ऐसा लभिया इन्ने नेड़े हो गए, इन्ना प्यार पा लिया, इन्नी सांझ पा ली, प्यो पुत्रां वांग एकमेक हो गए। और फिर एक होर गल, वो जग भोग जोग ध्यान करने वाले तो कई बार संसार नूं छड्ड के बाहर भटकते नजर आए, गुरु का सिख संसार च रहिंदिया होए घर बार च रहिंदिया होए परस्पर सत्कार दा अधिकारी बन के एक दूजे विच सतगुरु दे दर्शन करदा होया एक दूजे पैरी पैंदा नजर आउंदा, और इसे संसार च रहिंदिया होया प्रभु दे प्यार नूं मानदिया गुरु दे प्यार नूं मानदिया होया माया विच उदास रखाया। पर एक गल है, जे तां गुरु नाल गल्लां करनियां ने ते गुर शब्द नूं विचारां, जे गुरु के नजदीक होना है गुरु नाल विचार दी सांझ पाउणी है, प्यार दी सांझ पाउणी है ते गुर शब्द दी सांझ भी पाउणी पएगी। लेकिन जे कदे गुरु नूं प्रसन्न करना होवे ते महाराज पावन बाणी च कहिंदे ने, साहिब कहिंदे ने गुर सिखां अंदर सतगुर वरतै जो सिखां नूं लोचै सो गुर खुशी आ, जेड़ा गुरसिखां नूं प्यार करदा गुरु की खुशी लैंदा, विच संगत हर प्रभु वसै जी, इसे संगत च गुरसिखां विच वाहिगुरु आप वसदा है, इन्हां दी खुशी गुरु की खुशी पार ब्रह्म दी खुशी। इसे करके गुरमुखां गुरसिखां सत्संगियां ने गुरु प्यार वालियां शब्द विचार वालियां नाम दी कमाई वालियां दी खुशी लैण दा यतन कीता सदा। और भाई साहब पुन भी बड़ा कहिंदे, भाई साहब कहिंदे ने जे किते गुरसिखां दी सेवा च लग जाइए ना ते गुरु वालों बड़ियां खुशियां प्राप्त हुंदियां ने, एडा वड्डा पुन है जिहड़े उसले प्रचलित पुन्नां दीआं गल्लां सन, जिहड़े जतन लोक प्रभु प्रसन्नता दे करदे सन, पूजा पाठ पुन दान तीर्थ यात्रा आदि वड्डे वड्डे यज्ञ आदि भाई साहब ने सब नीवें पा दित्ते।

कथाओं नहीं तुझे आ बतो पुरख विधाते आंखों सुहे जिठे सबे थाओ नहीं तुझे आ बदो पुरख विधाते आंखों सुहे वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर हरिहा नानक कसम।

विस्तार केवन के नहीं निवल भयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वैसा कि नहीं ग्रह तजवन खंड पाया कि नहीं मोन अवधूत सदाया कोई कह तो अनन भगवती मोहे दीन हर हर ओट लीती किनी कया मैं कुले वडाई किनी कया बां बो भाई कोई कहे मैं धने पसारा मोहे दीन हर हर आधारा किनी भवन

जल बिन साख कुमलावती उपजै नाही दाम हर नहा ना मिलिए साजने कत पाए विश्राम जित कर हर कंत ना प्रगटे पाठ नगर से ग्राम सर्व सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम प्रभ स्वामी कंत विहूणिया मीत सज्जन सब जाम नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम हर मेलो स्वामी।

मिले विछड़ क्यों रोवन साधु संग प्राप्ते नानक रंग मानन हर जेठ रंगीला तिस तनी जिसके पाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाहो न जिन्ना पास आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर नाहो न जिन्ना पास जग जीवन पुर

निराश जिनको साधु पेटी है सो दरगे होए खलास। कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास। प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास। आषाढ़ सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण

मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ाव्या दिसन सबे छार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तिण प्रभ संग मौलिया।

फल गुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगटे आए। फल गुण आनंद उपार जना हर सज्जन।

परमेश्वर जी महाराज ने भगत जी तुसी भी पानी पियो ते नामदेव जी ने इनकार कर दिता। कहन लगे महाराज मैं केवल अपनी प्यास नहीं बुझाना चाहुंदा, मैं चाहुंदा हां कि आने वाले समय दे विच जो राही इस राह तो गुजरन ए कुआं उना दी भी प्यास बुझावे। एदे विच जल जो है ओ नको नक परा। ज्ञानेश्वर जी ने समझाया बच्चे तू अपनी प्यास बुझा तां जो असी अगे भी राहे पैना है और द्वारका नगरी पहुंचना है। मगर नामदेव इनकारी होके थोड़े दूर जा बैठे ते जा करके परमात्मा दे चरणा कमल

जिस तरह ही तत्काल ए अरदास सुनी ते उसे खूह दे विच्चों एक कड़क दी आवाज आई, मानो के धरती फट गई उस खूह दी ते थले जो पानी सी ओ लबा लब खूह दे विच पर आया। जदों देखिया ज्ञानेश्वर जी ने और उना दे सेवका ने के भगत नामदेव दी अरदास उस नारायण दे चरना कमलां विच कबूल होई है, तां सारे आए

कामदेव ते भगती दी अवस्था विच सन, ओह ते नारायण दे चरना कमलां विच जुड़े हुए सन, ते हर विक विचों नारायण देखदे हुए

बाद श्री वाहेगुरु जी की फतेह जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं छपे छंद तप प्रसाद चक्र चेहन अर बरन जात अर पात नहन जे रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत कहे अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमितोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साहो सहान गण जय त्रिपौन मही सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम बरनत सुमत पुजंग पर्यात छंद।

राजा राम की कहानी अंतरजोत राम प्रगासा गुरमुख बिरले जाने कहानी कहते हैं।

तीन बंदा विच इस तरह वंडदे हन। हे भाई, जे कोई मनुख अपने आप नू गुरु दे हवाले करदा है, ओ प्रकाश रूप परमात्मा दे मेल दी अवस्था नू समझ लैंदा है। उस दे अंदर जोत जग पैंदी है, उस दे अंदर राम दा प्रकाश हो जांदा है। पर इस अवस्था नाल जान पछाण करन वाला हुंदा कोई विरला ही है। गुरु दे सन्मुख होए अजिहे मनुख नूं इह समझ आ जांदी है कि संसार एक रुख समान है।

अमृत दी एक बगीची है जो उस पूर्ण परमात्मा ने बनाई है। जिमे एक पौरा फुल दे रस विच मस्त होके फुल दियां खिड़िया पत्तियां विच अपने आप नु जा बनाउंदा है, जिमे कोई पंछी अपने खंभा नाल हवा नु उलारा दे के आकाश विच उड़दा है, तिवें ओ गुरमुख नाम रस विच मस्त होके पूर्ण खड़ाओ नु अपने हिरदे विच टिकांदा है ते सोच मंजल विच हुलारा दे के प्रभु चरणा विच उड़ारी लांदा है। उस गुरमुख दी उस अडोल अफुर अवस्था विच उस दे अंदर कोमलता रूप मानो एक कोमल बूटा उगदा है जो उस दे शरीर दी तृष्णा नु सुका देंदा है। कबीर साहब कहंदे ने, मैं उस इंसान दा उस गुरमुख दा दास हां जिसने अपने अंदर उगया होया एक कोमल बूटा देखिया। सत्संगत, ए ब्रह्म ज्ञान दी अवस्था दा शब्द है जेड़ा इस कहानी नु जान लैंदा है कि परमेश्वर दे नाल गुरु मेल करांदा है और परमेश्वर दे नाल जद मेल हो जाए

बादल बिन बरखा हुई नाम दी प्रसाद वास्ते बदलां दी लोड़ नहीं पैंदी। जो तत बिचारे कोई भगत नामदेव जी कह रहे ने, अगर इस दी विचार करोगे ते फिर तुहाडा जीवन उच्चा हो जाएगा, अंदर नाम वसेगा, दुविधा ईरखा भज जाएगी और हर वेले नाम दी बरसात होवेगी, भाव हर वेले तुसी परमेश्वर दा

कहिंदे ने सुरमा। गुरु ने ज्ञान दा ऐसा सुरमा दिता कि मैनू इस गल दी सोझी हो गई, राम नाम तो बगैर जीवन

मैं सिमरन करके ये गल जान ली है कि सिमरन करन दे नाल जिथे दुखां दा नास हुंदा है उथे जग जीवन सिंह जीव समाना जीवन देन वाला जेड़ा परमात्मा है ओ दे नाल जीव दा मिलाप हो जांदा है और ओ इंसान इस कहानी नू जान लैंदा है सिमरन सदका कि सारे विच परमेश्वर दा नूर है ओ दी जो

मन दी हर तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि नाम जिहड़ा है ये सारिया भुखा तृष्णावां खत्म कर देंदा। हर इंसान एक चीज मिले ते दूसरे दी इच्छा मन विच पैदा होंदी, हर इंसान भज रहा है। जिद कोल एक चीज है उसनु दूसरी चीज की लोड़ है। एक देश का जी राजा है, राजा बन के भी उन्हें तसली नहीं, कुछ होर चाहता। कोई वजीर है, वजीरी लेके भी वो रजिया नहीं, कुछ होर चाहता। हर इंसान भज रहा है, पर सतगुरु जी कह रहे हैं सुख नाहीं बहुते धन खाटे, सुख बहुती माया विच भी नहीं।

जितना समा परमेश्वर दे नाम दा कीर्तन सुनोगे उतना समा तुहानू अपने दुख कलेश भुल जाणगे। ते जदों उस रंग विच उठोगे दुख कलेश फिर घेर लैणगे। इसे वास्ते ते गुरु महाराज भगत गुरमुख उपदेश करदे हन कि हर वेले परमेश्वर वल ध्यान रखो। जिवें कीर्तन सुनदे आ दुख भुल जांदे ने, हर वेले उहदा नाम चेते रखोगे ते दुख कलेश कदी भी तुहानू तंग नहीं करनगे। पर इन्हां गल्लां दी सोझी हुंदी है जदों गुरु अते गुरु दी बाणी दा सानू ज्ञान होवे। गुरु की है? गुरु है बाणी, क्योंकि गुरु बाणी द्वारा उपदेश देंदा है। इसे वास्ते सतगुरु जी अपने शब्द विच इस तरह फरमांदे हैं।

पैगंबर अपने नाल जोड़े कि सब कुछ मैं हां, मैं परमेश्वर हां, समझो ओ परमेश्वर तू भुलिया होया, ते जिहड़ा परमेश्वर नाल जोड़े असल विच समझो ए परमेश्वर नाल जुड़िया होया है, क्योंकि ए परमेश्वर नाल जोड़ रहा है।

एक अल्लाह एक वाहेगुरु संसार ते भेजण वाला है, इस करके ओदे नाल जुड़ो। गुरु इन्हां गल्लां दा ज्ञान करांदा है कि मेल करना है ता परमेश्वर नाल करो। ते सतगुरु जी फरमांदे हन गुरु दा मेल किन्ना जरूरी है।

इतना चानना कितनी रोशनी होंदी है एक सूरज दे चढ़न ते। अगर हजार सूरज भी चढ़ पवे सौ चंद्रमा भी रोशनी देवे तावी मन दे विच हनेरा रहिंदा है अगर मन विच ज्ञान ने। कई बार आपां देखदे हां एयर कंडीशन कमरे हुंदे ने पर अंदर बैठा इंसान सड़ रहा हुंदा है गुस्से दे नाल, उहदे मन नूं चैन नहीं हुंदा। रोशनी विच इंसान बैठा भी अंधेरे विच हुंदा है, अंधेरा केड़ा अज्ञान दा। अज्ञान की है? अज्ञान ए है कि दूसरे दा हक मैं खावां, अपनी सुख वास्ते दूसरे दा हक खाना, दूसरे नूं दुख देना, ए है अज्ञान। ते ज्ञान की है? ज्ञान ए है कि भाई सारे विच परमेश्वर है, सारे विच खुदा है, वाहिगुरु है, जे सारे विच ओ है फिर ते मैं सारे नाल प्यार करांगा। इन्हां गल्लां दी सोझी

हजार सूरज होवे सौ चंद्रमा होवे पर जे गुरु नहीं मिलिया ता इस चाननी दा क्या फायदा जे मन दे विच ज्ञान नहीं मन विच अज्ञान है।

बगैर परमेश्वर की कहानी का पता नहीं लगता। गुरु परमेश्वर की कहानी दसदा है कि सारे विच परमेश्वर है, ते जेड़े गुरु का उपदेश सुनते हैं

किस तरह अपने प्यारियां दी अरदासां सुनदा है। परमेश्वर भगतां दी रखिया वास्ते अपने दूतां नूं अपने प्यारियां नूं भेजदा है। विष्णु भगवान ने आप नदी किनारे पहुंच के तंदुए दियां तारां कट्टियां और हाथी दी बंद खलास कीती। ए हाथी पानी विच बाहर निकलिया, नदी दे किनारे आया ते की देखदा है, सामने विष्णु भगवान खड़े हैं। बेशक जोन हाथी दी है पर सोजी है, हाथी नु सारी सोजी है, फिर भगवान सामने खड़ा है ते जीवन दी सोजी क्यों ना होवे। अगलियां दोनों लता निवा के हाथी ने नमस्कार कीती और मानो पुकार पिया करदा है, भगवान कृपा कर इस जून दे विचों साडा छुटकारा कर, बड़ा दुख भोगे है।

लक्षण बदल गए, सुलक्षणे हो गए, शुभ लक्षण हो गए। लक्षण कहिंदे ने जो कुछ नजर आउंदा होवे, मनुख दी अंदर दी रहनी जिस वेले बाहर आ जांदी है लक्षण कहाउंदी। सतगुरु क्योंकि मनुख दी रहनी सुधार देंदे ने, इस करके जबान मिठी हो गई लक्षण चंगा है, चाल ठीक हो गई करते पुरख ताल दिवाया, जिंदगी ताल विच आ गई, बेताली जिंदगी ताल विच आ गई, चाल ठीक हो गई। और एक अन्य लक्षण जेड़े ने रफ्तार दस्तार गुफ्तार यही तो गल्लां होंदियां ने जिन्हां तो बंदा पछाणिया जांदा है। पग किहो जी बनदा है, भाव इस नूं अपने सजन सजाउण दा ख्याल भी है कि नहीं। और यही वजह है कि लोग तां कहिंदे ने पग बननी, लेकिन गुरु का सिख कहिंदा दस्तार सजाउणी है, क्योंकि उन्हूं बड़ा ख्याल है कि मेरे सजन दा सवाल है, मैं सजिया सजाया गया ते सज के रहना मेरा काम। दस्तार तो पता लगता है इस बंदे दी रहनी बहनी की है, भाव वस्त्र पाउण तो रहनी बहनी तो मनुख दे अंदर दी सफाई दा ते अपने आप नूं बना के रखण दी रुचि दा पता लगता है, चाल तो पता लगता है इहनूं तुरना आउंदा है, चाल तो ही चाल चलन दा भी पता लगता है, ते गुफ्तार तो जबान तो बोलन तो भी पता लगता है इस दे अंदर की है। जो जीए होए सो उगवे, जबान तो ता ही निकलेगा जो अंदर है, अंदर बाणी है ते मुंह बाणी निकलेगी, अंदर प्यार है ते मुंह प्यार निकलेगा, अंदर नफरत है ते मुंह गाला निकलेगी। सतगुरु की कृपा दे नाल मनुख दे लक्षण बदलते, पर उदो बदलते जो गुरु के मार्ग पै जाए।